0: B&B Dental Clinic, Ghorahi 15 Dam.
1: मेरो लागि मायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्तक जरुरी सूचना झुमो बेला खेमरिदे गरम ओगोदिरी जेउ बेला सुनो फुरी कता ओचुदिरी जेउ आउ बेला क वन जंगल ल ने लागिने मस्तक सम्भावना ताई आउ ये गिनी प्राकृतिक सम्पदा र तक्षेप्त जस खेम्नाले वातावरण मिलेने लख्यापा असर किने रि उमुल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्तक तानाले भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सुनो माखा नामेल ने लागिने सज जिनी गिनी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख बिंगे को ठेल नेला की नाटी जन धने में खेता छिटी ताऊ दुबो होकाई
2: गेछो छालियाला बन्न नेलाकिने पुरो रङले नौ पुराले चौसो खेल गिरी
1: वन जंगल सर मेरा आइरी बानी एमएल एमए ओ सथा मेला लि उसोकर पोतर रामै पार जगे रहते
2: सलाई लाइटर स्याउला मे सचाउने चीज रालै जबांगजा र यामा देने पोल गेने या इतौ चीज र रहिदे वन जंगल याले के बाबाय
1: पिकनिक वन भोज बाको मे सचाउसु छिनि नेले चौसो सैदे कि खनाले वन जंगल ओसो छामि दैके बारीको चुरोद विधि ओरेको नै कोबा
2: नान्थर नाम्रो लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हुने ढालले च अनुगमन दिने व्यवस्था चौसर्गी दिए
1: गेछो छानेला खोरे ल चाउसी पोलिए हरिदे तरिन गाई गेज मेके लाइजु अब नजिरे बने गेम ये ल गेज मेके नालाए औले लायो के नाइजे
2: वन जंगल स जुडिसी हो गेम बारी ल बाली नाली कुचुला चुली यात्रा रस चौसो छिने ने चौसो सहिदे के खेले या
1: वन जंगल मेला दुगे माइए ने लागि किनी पार जना खर्नाम बारे मिलि दे भनै सानो ज मे गेसै
2: बच्चा सुचलि जु बेला त हिजिन के कोटल मे के सतान किने हेनो खिम छिनि मे चाउस गेसै
1: मे लागि नि निताई गे मने के पछिए सुनो अरुले मने के बच्छ या
2: के छ थामला पोयाल मे लागि किसन किने गे छ त ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनछरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका उनि कार्यालय ल खबर दिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा